सयों रेडियो, हजारों रेडियो कर्मी र करोड़ों नेपाली को माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN।

कोरोना को लाभ दी आफ्नो कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंसुरेंस को बीमा अधिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंसुरेंस खुले जीऊ।

0: एनएसएफ अमेरिका द्वारा प्रमाणित रोगाड ब्रांड साथ ही मार्बल का यूपीवीसी प्रोडक्ट लेड फ्री यूवी रेसिस्टेंट र हाई इम्पैक्ट स्ट्रेंथ भएको
1: सुरक्षा घर को सात जीवन भर
2: यू हो।

0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले बिहानको ठीक 10 बज्यो।

बीमा को लाभ दिए आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो।

0: रेडियो रेडियो दीदी बहनी को समय सूचक हो।
1: अहिले अपराह्न को ठीक 4 बजे।

0: बीमा को लाभ दी आप कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले जियौ।
1: रेडियो दीदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ट्ज।

0: हो अब विदेश पठाएको पैसा सीधे खल्ती वालेट में
1: नेपाल को कुनै पनि बैंक खाता में वा 45,000 भन्दा बढी आईएमई काउंटर मार्फत
0: आफन्तको हाथ हाथ में पुर्याउन आईएमई गरौं
1: 25 वर्ष देखि सारा नेपालीको विश्वास आईएमई गरौं।